0: सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
1: डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम
2: और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल Auto protected.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location.
4: High appreciation
5: in Dubai.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

0: भोले वाले ललुआ
1: बोले बोले बोले बोले बोले बोले
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
2: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
3: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते हैं।

सजनी तू कहे आई नगरी हमारी, धरेगा विदेशी बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम का।

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा ना रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखे सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Gold, traffic and travel.
2: Good morning, Cameron McGarvey here. First of all, to Wealdstone and A407 High Street, we've got the faulty temporary traffic lights at Dunhill Lane with diversion operation for a number of bus routes. The lights are currently stuck on red. Public transport-wise, a few things going on this morning. First of all, we've got severe disruption on bus services due to strike action that started earlier this morning, continuing until Friday. So do bear that one in mind. Do check your bus routes before you travel today. Central Line, we've got no service between Leytonstone and Loughton and Leytonstone and Newbury Park due to late finish of engineering work. And Piccadilly Line, no service between Uxbridge and Cockfosters, again due to work. So that's your traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
6: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956 278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: loss अब है stop loss।
1: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानु बंद करो।
1: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसलीप, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: Look, there's a snail, and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
6: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
5: Conditions apply. See online for details.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
8: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.
9: Gold Breakfast with Kajal on Laika Gold.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99, exclusively at quality food stores.
4: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: Carotino Better Ghee. The healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड.

0: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Two businesses.
4: Same town.
3: Same service.
4: One appears on page one of Google.
3: The other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Watford में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
6: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
7: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
8: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
9: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक दैट्स 80 मिलियन इयर्स गिव अ टेक Amplify your advertising at radiocentre.org.
10: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
11: Gold Breakfast with Kajal on Like a Gold.

0: कभी तो हंसाए।
1: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. Ye hai Laika Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल travelhub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: travelhub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज,
3: डिस्कवर द इंडियन ओशन विद स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज। बुक एक्सक्लूसिव एमिरेट्स हॉलीडे ऑफर्स टू मॉरिशस, द मालदीव्स, सेशेल्स एंड श्रीलंका।
4: चूज फ्रॉम लग्जरी बीच एस्केप्स, फैमिली रिसॉर्ट्स एंड इनक्रेडिबल मल्टी सेंटर हॉलीडेज, ऑल एट एक्सक्लूसिव प्राइसेस।
3: कॉल स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज टुडे ऑन 01923883100. That's 01923883100.
4: At all protected.
5: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
6: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
5: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
6: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923 227274. Book your table today. Start

0: What a classic, right? Shabir Kumar and Asha Bhosle. Now, let's talk about these two. Shabir Kumar, like, you know, songs like this, always, majority of the times, were with Asha Bhosle. And this classic is from the film Sultanat. I absolutely love this. I think this is a perfect song for this morning, for our 80s era. Right now, I've got one more coming up.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And gold is trading at £104.88 sterling per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: And Oldie Goldie coming up. I'll see you tomorrow. Ravi Sharma's up next. Have a great day.
1: Like a Gold, traffic and travel.
2: Good morning, Cameron McGarvey here. Streatham and A23 Streatham High Road still got that closed there northbound due to the faulty traffic lights, with traffic clearing congestion back to Streatham Common. M25 anti-clockwise, long delays from Junction 17 Denham Way at Maple Cross to Junction 16 for the M40. Travel time 30 minutes. Stonebridge Hillside, we've got traffic light failure at Knatchbull Road and Brentfield Road with the lights stuck on red. Public transport wise, we've got the London bus strikes today, so 43 bus routes are affected, so do check before you travel. And then Mildmay London Overground Line, minor delays and no service between Richmond and South Acton.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: पल भर के लिए
5: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए. संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 hours line.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel, at all protected.
4: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota.
5: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
4: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 pm. Show starts 6 pm. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
6: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
7: 10 days साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवंबर टू मार्च. बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
8: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमी श्रोताओं का मनोरंजन प्रोग्राम में। पहले तो भाई सबकी ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से काजल को धन्यवाद कहें। शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग एंड नाउ इट्स माय टर्न। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक ये मनोरंजन कार्यक्रम लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ बहनों भाइयों, और मुझे यकीन है आप मेरा साथ निभाएंगे। आपका हमारा रिश्ता पुराना है, और भाई जो चाहत है, चाहतों को कभी जतलाया नहीं जा सकता, रिश्ता कोई भी हो समझाया नहीं जा सकता। करना पड़ता है कभी सिर्फ कहे पर भी यकीन, दिल सदा चीर के दिखलाया नहीं जा सकता। दिल जो आईना है, आ जाए अगर बाल इसमें तो मोल हीरों के भी जुड़वाया नहीं जा सकता। ना तो अनारकली और ना मैं शहजादा सलीम, जिंदा दीवार में चिनवाया नहीं जा सकता।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: रिश्ता कोई भी हो समझाया नहीं जा सकता। और भाई दिल सदा चीर के दिखलाया नहीं जा सकता, अगर जा सकता तो देख लो दिल चीर के।

0: बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत भाई आते ही स्टूडियो में मैं परोसता हूं आपके सामने, और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आते हैं। पहला गीत दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म रंग। और अभी अभी जो गीत आपने सुना, ये लड़का कितना दीवाना है भाई, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथी गा रहे थे इस गीत को फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए। और भाई दो गीत सुनवाने के बाद हम आपको पाउंड का रेट बताते हैं, लेकिन याद दिला दूं आज मंगलवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 18 तारीख हो गई है, और वक्त है भाई हमारी आपकी मुलाकात का। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 10:15 बज चुके हैं। लीजिए आइए देखते हैं SBI UK कितने पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले आज।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK रिमाइंडिंग दैट बाई टूडेज रेट इज वेरी गुड। एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में वो दे रहे हैं 129 रुपीज एग्जैक्टली, एंड दैट्स मैक्सिमम 129 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच और ऑनलाइन, या फिर यू कैन यूज योनो SBI UK मोबाइल ऐप टू सेंड द मनी टू India.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Yes, T and C's apply. Terms and conditions lagu hoti.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: The movie is starting. Turn off your phones.
3: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
4: Destinies? What destinies?
3: Bringing everyone to the movies. Because I decide people only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
2: Alexander, phone off.
3: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
5: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays or Wednesdays, ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
6: This is Leica Gold.
7: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: जन्मों से उलझना ठीक नहीं है। ये भाई क्या है, गीत है या धमकी है? शमशाद बेगम, आशा भोसले और सहेलियां गा रही थी भाई ये कव्वाली, और ये कव्वाली चौधवी का चांद फिल्म से ली गई थी। रवि साहब का संगीत था, और आपको बताएं कि कार्यक्रम में रवि साहब ने बिना साजबाज की वैसे ही गा के सुनाई थी हमें ये कव्वाली। सुरीले थे, कई संगीतकार गाते भी हैं, कई फिल्मों में अच्छे गीत वही कई संगीतकारों ने दिए हैं। खैर साहब, ये गीत हमें ले आया है इस मोड़ पर जहां अब आप आज के प्रमुख समाचार सुनेंगे। Feel good track.
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
0: gold. और साहब स्वागत है आपका लाइक अ गोल्ड पर। अब आज की खास खास खबरों में एक तो भाई सस्पेक्ट चार्ज आफ्टर मैन बिटन बाय ए डॉग, ये खबर भी काफ़ी तूल पकड़ रही है। और इसके अलावा भाई मौसम का बदलाव जो है वो भी खबरों का हिस्सा बना हुआ है। यूके रिस्पॉन्स आफ्टर रशिया थ्रेटन्स इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यूक्रेन के साथ रशिया के युद्ध में कहते हैं भाई जो भूमिका ब्रिटेन की रही है उसके लिए भाई रूस जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है और कहता है कि जो नहीं, अगर आप रुकेंगे उनको हेल्प करना तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें, यानी नतीजे भोगने के लिए। ये तो खबर भाई यहाँ की, आप देखें पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खास खास खबरें सुनिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमला हुआ है, क्रू मेंबर की मौत हो गई है। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपॉइंट किए प्रभारी, और विनोद तावड़े को मिली यूपी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की। ट्रंप की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी मौजूदा कार्यकाल में सबसे लो लेवल पर, निचले स्तर पर है, ये सर्वे के बाद जाहिर हुआ है। और झारखंड में परीक्षा रद्द होने के बाद भी आंदोलन जारी है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। जरा विस्तार से देखें खबरों को। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। उन्हें 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अस्पताल में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने इमरान खान की अस्पताल में भर्ती कराने की एप्लीकेशन पर सुनवाई की। पीठ की अध्यक्षता जस्टिस शाहिद वाहिद ने की, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम इसके सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने इमरान खान की हेल्थ से जुड़े उनके पूरे मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का ऑर्डर जारी किया है। भारत से भी एक खबर आई, अस्पताल से जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। परिवार एवं कल्याण मंत्री एवं हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा की 17 अगस्त को यानी कल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी हुई है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अस्पताल ने आज बताया कि उनकी हालत स्टेबल है और उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करके स्टूडेंट प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स पर ज्यादा ताकत के इस्तेमाल के इल्जामों से इनकार किया है। डीसीपी सचिन शर्मा की ओर से दाखिल जवाबी हल्फनामे में कहा गया है कि प्रदर्शन उस समय शांतिपूर्ण नहीं रहा जब भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद संसद की ओर जाने की कोशिश की, उस वक्त भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बल का इस्तेमाल किया था, अदरवाइज बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया गया। बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने अपील करते हुए कहा है कि सारे नौजवान एकजुट होकर 19 अगस्त को हमारे साथ आएं, पटना में राजभवन मार्च निकालेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के क्यों नहीं होती, क्या नौकरी में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन होता है, जानना चाहते हैं अपोजिशन लीडर। इंटरनेशनल खबरों में हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमले की खबर आ रही है। ये अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की खबर है। अभी पता नहीं चल रहा है कि किधर से किसने हमला किया। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UKMTO के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है और एक क्रू मेंबर की मौत भी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत में राज्यों में 3 अपॉइंट किए हैं प्रभारी। यूपी की जिम्मेदारी मिली है किसको, अध्यक्ष जो है BJP के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने, उत्तर प्रदेश पंजाब और गुजरात के लिए नए जो प्रदेश प्रभारी हैं इंचार्ज हैं वो अपॉइंट किए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आज सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 32 जख्मी हुए हैं। यह हादसा भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर छिमका गांव के पास रात को करीब 1 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक मजदूर धान की रोपाई का काम पूरा करने के बाद ग्वालियर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी पिकअप गाड़ी की सामने से आ रहे एक डंपर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। तमिलनाडु की विधानसभा में कल सोमवार को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M. करुणानिधि का नाम लिए जाने को लेकर के जमकर हंगामा हुआ और विवाद बढ़ने लगा तो मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने मंत्री की ओर से माफी मांगी और कहा कि सदन में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का नाम इस तरह लेना ठीक नहीं था, उचित नहीं था। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ताजा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% रह गई है जो उनके मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। सर्वे में शामिल 64% अमेरिकी सिटीजन्स ने राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के प्रदर्शन को नापसंद किया है जबकि 33% लोग उनके कामकाज को मंजूरी देते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर एक हमला बोलते हुए कहा कि BJP और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। गोवा में कल सोमवार को कांग्रेस के एक सम्मेलन के दौरान खड़गे ने कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, MLA बना था, तभी अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP और इनके पुरखों ने कभी भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति ना सिखाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत, उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने कल कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत गंभीर स्तर पर जारी है लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी तक किसी भी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक बयान जारी करके भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि भारत ने अपने यहां कुछ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने यह प्रचार अपनी घरेलू सिक्योरिटी चुनौतियों से ध्यान हटाने और राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के लिए किया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल कहा कि ऐसा प्रचार पाकिस्तान के खिलाफ भारत के गलत अभियान का एक एग्जाम्पल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल कश्मीर और दूसरे राज्यों में जो आवाजें उठ रही हैं उनके दमन को लेकर के भारतीय होम मिनिस्टर ने बयान दिया था। बलूचिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल है उसको लेकर के भारत के होम मिनिस्टर ने कुछ आरोप लगाए थे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है Like a Gold 10:35 AM
2: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।
0: लौट आइए अब संगीत की ओर। मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाजों में सुनिए ये गीत। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, दिस इज मनोरंजन ऑन लाइका गोल्ड रेडियो विद रवि शर्मा।

मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। और भाई मैंने वादा किया था कि क्रिकेट के बारे में स्कोर बताऊंगा, पर भाई वहां तो बारिश हो रही है। भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर है, पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन बीच बीच में भाई बारिश रुकावट बन रही है। ये बारिश जहाँ इसकी ज़रूरत होती है ना वहाँ तरसाती है, और जहाँ पर भाई क्रिकेट चल रहा है वहाँ जा करके पानी बरसाती है। भारत ने भाई पहली इनिंग में 462 रन का बड़ा स्कोर बनाया था और श्रीलंका को 284 रन पर आउट कर दिया था। अब दूसरी इनिंग में बारिश के कारण खेल रुका हुआ है, भारत ने 193 रन बना लिए हैं। समय कम है इसलिए अब वो ज़्यादा रन जुटाने के लिए नहीं बल्कि जल्दी से पारी डिक्लेयर करके मेरा ख्याल है श्रीलंका को बैटिंग के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर बारिश रुकेगी तो आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड।

0: दो ना,
1: तुम भी कोई गीत साथ गा दो ना। भाई मैं तो गा लूं, फिर वो मना करते हैं, फिर वो धमकी देते हैं। भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गाना आपको तो सुनवा दिया। और भाई ये गाना खास तौर पर गया मारियो फर्नांडिस के और मंगल भाई वाल्मीकि के, वो दोनों सुन रहे हैं इस वक्त अंबाला में, अंबाला शहर में नहीं, अंबाला शॉप में। भाई आप दोनों के नाम ही ये गीत है, मस्ती मनाइए। और मस्ती के लिए कोई कारण तो होना चाहिए ना, कारण ये है
2: लाइका गोल्ड।
1: लाइका गोल्ड है भाई, लेकिन मैं पहले बताने लगा था कि ये गीत क्यों लगाया हमने, इसलिए कि मेरा जो खोया हुआ पास था ना वो मिल गया। ओके थैंक यू वेरी मच। अब आइए करेंसी रेट्स में आपको बताने लगा हूँ। करेंसी रेट्स नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में लैम्फाई वाले दे रहे हैं 129.47 रुपीस, पाकिस्तानी रुपए दे रहे हैं 375.75, श्रीलंकन रुपए 449.23, बांग्लादेशी टके 165.84 एंड अफगान अफगानी 89.29।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Well, the gold is trading at the rate of 104.51 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना, परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में, समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक, नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
2: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
6: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
7: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
8: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
9: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो।
10: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानू बंद करो।
8: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमां। हवे राइसली, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटनमां। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजूने ऑन 0793153420। नाटकनुं नाम याद राखजो
11: हालो पटेल भाईनी जानमां।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और भन भाइयों, मनोरंजन कार्यक्रम का ये पड़ाव गंभीर विचारों से भरा होता है, जीवन को संवारने के लिए एकदम खरा होता है। सुनिए आज का चिंतन। आजकल भाई भारत से बहुत सारे महात्माओं का प्रवास जो है ब्रिटेन में हो रहा है, बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं और हमें चिंतन के लिए सामग्री वहां से मिलती है। कई हमारे श्रोता भिजवाते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि हमने ये फला जगह शास्त्रों से सुना, महात्मा से सुना, किसी कहीं ग्रंथ में पढ़ा, कुछ इतिहास से हम जानकारी जुटाते हैं। आज का चिंतन हमको भाई जिन्होंने भेजा है, एक नहीं कई लोग हैं, और कहते हैं हम सबके नाम बोलना, ठीक है भाई। ये प्रसाद वाले राजेश जी, उनकी टीम है पूरी, इनमें प्लेक्सी, अमीलिया और जेसी, मीनाक्षी, चैताली और कस्तूरी, प्रिया, मारिया, एनी, श्याम भाई एंड दीक्षा। कोई रहता नहीं क्या? दो चार नाम पड़ोसी भी ले आते आमने सामने से कहीं से। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चिंतन सुनते हैं बड़े चाव से, काम करते करते कहते हैं हमारे काम में रुकावट नहीं बनता चिंतन। भाई रेडियो रुकावट नहीं, सहायक होता है आपके कामकाज में, आपकी मेहनत में, आपको थकने नहीं देता, काम को रुकने नहीं देता। तो आज का चिंतन आप सब की ओर से। और भाई जो सामग्री है ये तो इसका श्रेय तो जाता है परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी महाराज। ये भारत से पधारे हैं, बड़े विद्वान हैं, और आज सुरेंद्र सोनी जी कहते हैं कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, अगर लोग उन्हें सुनना चाहें तो महात्मा जी का प्रवचन मेरा ख्याल आपसे थोड़ी देर बाद ही ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुरू हो रहा है हांसलों में। अब स्वामी जी एक बात कहते हैं भैरव भाइयों जो सबके जीवन पर लागू होती है। भारत में लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। सच पूछिए तो पढ़ाई लिखाई इस बात को ध्यान में रख के की जाती है कि उन्होंने किस चीज़ की नौकरी करनी है। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति भारत में बनाई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी तो नहीं होना चाहिए भाई, सिर्फ नौकरी। क्या नौकर बनने के लिए इतनी तालीम हासिल करते हो? मालिक बनो, अपना कामकाज शुरू करो। और इस संदर्भ में बड़े सरल शब्दों में स्वामी जी जो है वो एक उदाहरण सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक स्कूल था और वो स्कूल बड़ा प्रतिष्ठित रेपुटेड स्कूल था, इंग्लिश मीडियम से वहाँ पढ़ाई कराई जाती थी। और भाई वहाँ पर उस स्कूल का जो चपरासी घंटी बजाने वाला था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो स्कूल ने फैसला किया कि भाई उसकी नौकरी ख़त्म की जाए। काफ़ी सालों से काम कर रहा था, बच्चे उससे प्यार करते थे, लेकिन उससे नौकरी से हटा करके कहा भाई हम पढ़ा लिखा चपरासी चाहते हैं, घंटी बजाने वाला पढ़ा लिखा हो, अगर किसी के माता पिता बच्चे के आए या बच्चे भी अंग्रेजी में बात करें तो वो समझ पाए। महंगा स्कूल था, स्कूल से यूनिफॉर्म दी जाती थी, स्कूल से ही और चीज़ें, और उसका अच्छा खासा पैसा वसूला जाता था। खैर साहब उसे नौकरी से निकाल दिया और नौकरी के लिए फिर एडवर्टाइज जो है जारी की गई अखबारों में कि एक पढ़ा लिखा चपरासी की जॉब करने के लिए व्यक्ति चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक, मैट्रिकुलेशन। अब साहब चपरासी की जॉब के लिए भी सैकड़ों एप्लीकेशंस आ गई, और सिर्फ मैट्रिक नहीं, उनमें ग्रेजुएट्स भी थे। वो चाहते थे स्कूल वाले के कोई अंग्रेजी बोल सके, ऐसा चपरासी चाहिए स्कूल में। अब ये बेचारा इतने सालों की नौकरी के बाद चुपचाप स्कूल से बाहर निकल गया, चिंता में था, और ऐसे में संतों का संपर्क काम आता है। महात्मा जी से मिला, महात्मा ने कहा इतने साल नौकरी कर ली, क्या मिला? वही चपरासी के चपरासी हो, अब मालिक बन के देखो। मालिक कैसे बनूं महाराज? अपना कोई काम शुरू करो। जानते हो ऐसा काम जो तुम्हें आता है, जिसे तुम प्यार करते हो, उसके लिए तुम्हें एजुकेशन की जरूरत नहीं, सूझबूझ की जरूरत है। और बहन भाइयों जो असली एजुकेशन है ना वो है विवेक, सूझबूझ। अब इस चपरासी ने क्या किया,
ठीक स्कूल के सामने समोसे बेचना शुरू किया। स्कूल के बच्चे जानते थे इसे, बच्चों से ये प्यार भी बहुत करता था। अभी से वो समोसे

0: करने पड़े और उसके बाद तो साहब उसके समोसों की सप्लाई पूरे शहर में बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल समोसे फैक्ट्रीज में बनते हैं। वो यार इस व्यक्ति का भी था, कारोबार इतना फैला कि वो लखपति करोड़पति पूछो मत। शहर में जो रामू चपड़ासी था घंटी बजाने वाला, अब वो सेठ का शहर का सेठ रामलाल बन गया था। रामलाल सेठ के समोसे भाई अब दूर दूर तक, यहाँ तक कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे। कच्चे समोसे थोड़े गर्म कीजिए या तलिए, यहाँ भी मिलते हैं भारत से आए समोसे। कहने का भाव ये है कि उसकी सूझबूझ, उसका विवेक, उसका अनुभव उसे कहाँ ले गया। फिर भाई उसी स्कूल में एक सालाना फंक्शन होना था, शहर में ढूंढने लगे कि किसको इस बार सभापति बनाएं, अध्यक्ष बनाएं। जो ज्यादा पैसे देता था उसी को बनाते थे। इस बार सेठ रामलाल का नाम काफी हो चुका था। स्कूल वालों ने उनसे संपर्क किया कि आप हमारे यहां चीफ गेस्ट बन के आइए, सालाना जलसा है। अब साहब सेठ रामलाल सकुचाते, अब वो वेशभूषा भी बदल गई थी, चेहरे पर अलग तरह की रौनक थी और सोने की चैन उसके गले में झूल रही थी, हाथ में महंगी घड़ी। जब वो स्कूल में पहुंचा, तालियां बजी, हार पहनाए गए और उसने अपनी ओर से एक बड़ी धनराशि स्कूल के लिए दान दी। और जैसे इसके बाद उन्हें बोलने के लिए कुछ कहा, लोगों ने पूछा, सर आप इस स्कूल के सभापति बने हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी बोली बिल्कुल सीधी सिंपल है, आप कितना पढ़े लिखे हैं? सेठ रामलाल ने कहा, मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं कढ़ा हूं, मुझे इस स्कूल से निकाला गया था। चौंक गए सब। अब स्कूल वाले भी पहचानने लगे, अरे ये तो वही रामू घंटी बजाने वाला है। सेठ रामलाल ने कहा, पढ़ा नहीं लेकिन मैंने सीखा है, मैंने जाना है, पहचाना है। और बहन भाइयों आपको बता दें कि सीखना ही वो ज्ञान है। किताबी जो जानकारी है वो बहुत सारे लोगों के पास है। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत भारत में किताबी ज्ञान देकर के उन्हें क्लर्क बनाया जाता है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भाई सरकारी नौकरी मिल जाएगी और सरकारी नौकरी के पीछे इतने लोग हैं, इतने ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। अरे डिप्टी कमिश्नर भी बन जाएंगे तो रहेंगे तो सरकार के नौकरी। अपना काम देखिए। उन्होंने पूछा, जी आप कितना पढ़े हैं? सेठ रामलाल ने कहा, अगर मैं पढ़ता लिखता ना तो फिर मैं इस स्कूल में घंटी बजा रहा होता। ये जो मेरा कारोबार फैला है, ये मेरा अपना काम मैंने शुरू किया। और जो भी काम आप करें भाई अपना समझ के करते हैं तो फिर पूरा जोर लगा देते हैं। सेठ रामलाल ने कहा कि कामयाब होने के लिए किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, सूझबूझ आवश्यक है, विवेक आवश्यक है। मैं महात्मा जी से मिला, डिप्रेशन में था कि महाराज जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। महात्मा जी ने कहा कि जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची, जिस भगवान ने ये आकाश, जल, पृथ्वी, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, आसमान, रंग, खुशबू ये सब बनाए, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था? कहीं नहीं। वो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ बनाने वाला कौन से कॉलेज की डिग्री लेकर के ये सब काम कर रहा है?
1: दो अनपढ़ नादान, एक तुम
0: और दूसरे
1: भगवान,
0: एक सेठ रामलाल जैसे वो लोग जो अपनी सूझबूझ से, मेहनत से, ईमानदारी से अपना कारोबार खड़ा कर लेते हैं, और दूसरे प्रभु जिसने सारी सृष्टि रचाई है। बस ये दो अनपढ़ हैं।

0: आज का चिंतन, आज का विचार आप सुन रहे थे, और चिंतन के साथ जो गीत लता जी की आवाज में आपने सुना, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म मेहरबान, सुनील दत्त नूतन और अशोक कुमार की फिल्म, संगीतकार रवि भाई। मैं कुछ धुनों को सुनकर ही पहचान लेता हूँ कि ये स्टाइल रवि साहब का है, ये कल्याण जी आनंद जी का स्टाइल है। कई लोग आप भी जो है इस तरह महसूस करते होंगे। सारी दुनिया में देखे हैं दो अनपढ़ नादान, एक तुम और दूसरे भगवान। सूझबूझ विवेक चाहिए हमें, सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के नौकरी ही करनी है, और वो भी सरकारी नौकरी चाहिए। कहते हैं कि देश में बहुत बड़ी संख्या नौजवानों की है, भारत में ये युवा भारत है, और वो सब सरकारी नौकरी मांगेंगे, और नौकरी के लिए, तालीम के लिए बस स्कूल कॉलेज पर ही डिपेंड करेंगे, सरकार पर ही डिपेंड करेंगे, तो तरक्की रुक जाएगी। सूझबूझ से कारोबार अपना शुरू कीजिए, नौकर नहीं मालिक बनिए। टेक्निकल एजुकेशन हासिल कीजिए, ऐसी एजुकेशन जो काम क्रिएट करे, आप खुद भी काम करें औरों को भी काम दें। आज का चिंतन, आज का विचार भाई, ये परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी उमाकांतानंद जी जो भारत से पधारे हैं, उनके प्रवचनों से लिया गया था। और चिंतन प्रेमी बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि इसे प्रोग्राम में शामिल कीजिए, विशेषकर भाई वो प्रसाद वाले सारे कर्मचारी वो सुनना चाहते थे और सुनना चाहते थे। सुरेंद्र सौंधी जी जो आज स्वागत कर रहे हैं स्वामी जी का अपने यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर नेविल क्लोज हाउंसलो में। दोपहर में सत्संग है, अब से थोड़ी देर बाद शुरू होना। उसके बाद स्वामी जी भारत लौटने से पहले भाई अपना आशीर्वाद, अपना प्रसाद, अपनी वाणी का जो प्रसाद है वो यहाँ बांट रहे हैं। यूके में उनका स्वागत है, और लाइका रेडियो नेटवर्क पर भी हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनके विचारों के लिए। आइए चिंतन को समेटते हैं और लौटते हैं अपने कार्यक्रम के मूल रंग की ओर। याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है मनोरंजन में।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी State Bank of India UK. भाई आजकल रेट अच्छा चल रहा है, वो कहते हैं कि भारत पैसे भिजवाने हैं तो हमारी सेवाओं का फायदा उठाइए। आज का रेट for £1 they are giving 129 रुपीज एग्जैक्टली, एंड दैट्स द मैक्सिमम 129 रुपए अधिकतम आप एक पाउंड के बदले प्राप्त कर सकते हैं। एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। अपनों को पैसे भिजवाइए, और भाई राखी के मौके पर बहन को या माता पिता को आवश्यकता अनुसार, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सही समय है पैसे भिजवाने के लिए भारत में। और इसके साथ ही भाई आपको बता देंगे टर्म्स एंड कंडीशन भी इस पर लागू हैं।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई।
3: ये है लाइका गोल्ड। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
0: जहां जिंदगी वहां सेट गो माइक्रो।
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Start.

0: Mamster nu pani puri ane pani puri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: Home se sasta kahin nahi mil sakta.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. It's summer. On the Leica Radio Network.
5: वेरी गुड मॉर्निंग, स्वर्गीय मुकेश का स्वर। भाई दर्द भरे गीतों के लिए बना था ये कंठ, लेकिन कुछ ऐसे गीत भी जिनमें मस्ती है, अल्हड़पन है। राज कपूर की आवाज़ मुकेश जी के माध्यम से उनके होठों पर बहुत सजी आवाज़।

0: और लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो नेटवर्क का भाई पुराने गीतों का खजाना। आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम और बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए। और अब अगला गीत सुनवाने से पहले याद दिला दूं कि मेरी आपकी मुलाकात दोपहर बाद 1 बजे तक रहेगी। उसके बाद हमारे साथी बाली ब्रह्म भट्ट जो है फिल्मी जानकारियां लेकर के आपका साथ निभाएंगे और 4 बजे तक वो प्रोग्राम पेश करेंगे। 4 बजे के बाद हमारा ड्राइव टाइम शो होता है, इंतजार कीजिए।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है भाई, जिसके लिए आप वो कहना चाहते हैं, दिल से भी निकली बात दिल तक जरूर पहुंचती है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Like a extra podcast update.
0: Like a extra. भाई बहुत बहुमूल्य जानकारी है इस बार हमारे इस एपिसोड में। ये पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 29 ऑन लाइका एक्स्ट्रा है। इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? और इसका जवाब दे रहे हैं भाई अपने प्रवीण पटनी साहब, जो कि मीनार ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं। बड़ी गहन जानकारी है उनकी इस कारोबार में, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाइए, ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ होस्टेड बाई मी। और मैंने जब सवाल पूछे तो भाई मेरी अपनी आंखें खुल गई कि सोने में इन्वेस्ट करना इतना कारगर हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। बताते हैं, सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कहते हैं कि नोटबंदी हो सकती है, गोल्ड बंदी नहीं होती, गोल्ड बंद नहीं हो सकता। तो और भी बहुत सारी बातें कि कैसे करें, कितना करें, क्यों ज़रूरी है कहीं और पैसा लगाने की बजाय सोने में, तो ये ज़रूर देखिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Leica Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel.
7: Hey there,
6: on
7: 0208-922-444-24. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, Anthony Bate,
8: on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
9: And it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
11: Hello friends, main Sarita Sabharwal. Every weekend, 4 to 7, बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ Saturday and Sunday मेरे साथ रहेंगे।
12: I'm gonna tell all my friends to download the YONO SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
13: SBI UK regulated by the FCA and PRA.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
3: कूल म्यूजिक
4: फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क
5: और लाइका रेडियो नेटवर्क पर मैं देख रहा था चैट में आज किसका जन्मदिन है भाई। फिल्मी हस्तियों का जन्मदिन तो बाली भाई जो है वो मनाते हैं वो बताते हैं, लेकिन और भी मशहूर हस्तियां आज के दिन जन्मी उनका जिक्र मैं कर लूं जिनमें भाई शामिल हैं। आपने नाम सुना है विजयालक्ष्मी पंडित का? नहीं सुना? भारत के इतिहास से अगर आप जुड़े हैं तो भाई बता दूं विजयालक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये और ये बहुत बड़े पद पर रह चुकी हैं। ये यूनाइटेड नेशंस में वहाँ की जो महासभा है जनरल असेंबली है उसकी जो ये अध्यक्षा रह चुकी हैं और इसके अलावा भाई और लोकल पॉलिटिक्स में भी भारत की इन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा की। इसके अलावा आज जन्मदिन है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण का। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैडम। और भाई आज जन्मदिन मनाने वालों में बाजीराव वन ये भारतीय सूरमा योद्धा हुए हैं तो भाई उनको भी जन्मदिन की बधाई दें। और रणवीर शौरी ये एक एक्टर हैं कई फिल्मों में आपने देखा होगा इन्हें, इनका भी जन्मदिन आज पड़ता है। जालंधर में जन्मे थे 1972 में और 18 अगस्त 1936 में जन्मे थे जाने माने गीतकार शायर लेखक गुलजार साहब। गुलजार साहब की लंबी उम्र की दुआ करते हैं भाई हम। और आज ही के दिन जन्म लेने वालों में एक और नाम है हमारे पास, वो है संदीप पाटिल का। संदीप पाटिल कौन है भाई? क्रिकेटर हैं, बड़े चौके छक्के लगाते थे, ऊंचे लंबे कद वाले भाई संदीप पाटिल आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1956 में जन्मे थे मुंबई में। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू हिम। और बात क्रिकेट की चली तो मुझे याद है भाई मैच चल रहा है, स्कोर कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। नोट कीजिए भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच आज खेल का चौथा दिन है। और भाई चौथे दिन में आपको बताऊं कि पहले भारत ने बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में 462 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका की टीम सिमट गई 284 पर, तो लीड मिली पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में भारत की टीम ने जल्दी जल्दी खेलते हुए, क्योंकि काफ़ी खेल बारिश के हवाले हो गया था, तो आज भारत की टीम ने 193 रन बनाए और उसके सारे खिलाड़ी आउट हो गए। तो इस तरह से उनके पास लीड थी 350 रनों से भी ज़्यादा की लीड। अब श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में 21 रन बना लिए हैं और उसके दो विकेट चटका दिए हैं भारतीय गेंदबाजों ने, दो विकेट के नुकसान पर 21 रन। और भाई ये स्कोर तो बता दिया, लेकिन जो जन्मदिन मनाने वाले नाराज ना हो बता दें कि आज जन्मदिन दलेर मेहंदी का भी है। दलेर भाई
6: सच बोलना है मना,
5: जन्मदिन नहीं है क्या?

0: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੀ ਬੀਚ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ एक विकेट और गिरा दिया श्रीलंका का नाव श्रीलंका स्कोर इन सेकेंड इनिंग 21 रन आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स। दलेर मेहंदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दलेर पाजी कितने साल आधे हो गए कहते माइंड योर बिजनेस
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Note कीजिए साहब, क्या रेट चल रहा है swiftly का? एक पाउंड के बदले at this moment they are giving in Indian currency 129.46 rupees, Pakistani 375.6, Srilankan 449.15, Bangladeshi Taki 166.08 and Afghani 89.28.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: सराफा बाजार में सोने का भाव द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 104.52 पाउंड्स पर ग्राम
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934
5: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNC's apply.
6: हेलो रे हेलो आ जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पर रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: जमीन आसमान नहीं मिलते, लता जी की आवाज, जमीन आसमान, दैट वाज द नेम ऑफ द फिल्म, 1984 की फिल्म थी। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनाया भाई, वो गीत था चप्पा चप्पा चरखा चले, माचिस फिल्म से लिया था हमने। और उस फिल्म के और उस गीत के रचनाकार थे गुलजार साहब। गुलजार साहब आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी State Bank of India UK याद दिला रहे हैं कि भाई रेट अच्छा चल रहा है, भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए उनसे, उनकी सेवाओं का फायदा उठाइए। आज का रेट 129 rupees फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड,
3: आपका अपना उत्सव प्लस, अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें कि पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
3: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. We'll be right back.

0: after a sold-out show at the Royal Albert Hall. Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected
3: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
4: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
10: और भाइयों भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं साहिर लुधियानवी साहब। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कौन सा गीत आपको सुनवाऊं। बड़े गंभीर गीत उन्होंने लिखे हैं, बड़े क्या कहते हैं मार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कई गीतों में, लेकिन ये गीत कैसा रहेगा, सुनिए और सराहिए।

हमराज फिल्म का गीत लगाया था, लेकिन हमरा ही फिल्म का लग गया, वो आई और जे में फर्क नहीं, जेड में जो है वो कंप्यूटर फर्क नहीं कर सका, लेकिन साहिर साहब का गीत ये डेफिनेटली है। और ये वो गीत है जिसे अवार्ड मिला था।

किसी को इज्जत देने के लिए सरकार कह देती है, लेकिन धरने पर बैठे लड़के कह रहे हैं सरकार ने आके हमारा हाल तो पूछा। ये रांची की बात है भाई, उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मसले बने हुए हैं। राइट भाई, इतने सारे गीत सुनवा दिए मैंने, एक भी मैसेज ऐसा नहीं आया जो ये कह रहा हो कि शर्मा जी जो गीत आपने सुनवाया वो साहिर लुधियानवी का नहीं, वो तो किसका था, किसी और का था। शकील बदायूनी साहब का था।

0: एक प्यारा सा गाना बन गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने भाई गीतों की प्रशंसा में तारीफ लिखी है, लेकिन उन्होंने लिखा कि ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरे नाम कर दो। वो कौन सा गीत है निकल गया, क्योंकि कुछ देर पहले आपने मैसेज भेजा था। ये बड़ा कंफ्यूजिंग, क्या कहते हैं आप, हमें मुश्किलटी में डाल देते हैं। वत्सला जी, थैंक यू वेरी मच। विमल रायन सर।
1: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।
0: अब इतने गीतों में कौन सा गीत साहिर साहब का था, पहचानिए तो मानू और लिख करके भेजिएगा 07-424-232323 पर। आप जानते हैं, जगदीश जी बुशी में सुन रहे हैं, दिल का क्या करें साहेब, हम उन्हीं पे मरते हैं। और कसूर बस इतना है, जुर्म बस इतना है कि उनसे प्यार करते हैं। दिल का क्या करें साहेब, हम उन्हीं पे मरते हैं, और जुर्म बस इतना है कि उनसे प्यार करते हैं। क्या करें इस दिल का, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है दिल ने।

0: सब क्लॉस अब है स्टॉप क्लॉस।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: Look, there's a snail, and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
3: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
2: Conditions apply. See online for details.
4: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
5: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू भाई। हम धीरे धीरे प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वीकेंड पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना अपना यौम आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन साहब, कभी सोचा कि जिनकी बदौलत ये शुभ दिन हमारी ज़िंदगी में आया, हम उन्हें याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। एक नाम है जिनका आज के दिन के साथ संबंध है, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो भाई अखिलेश यादव अपने पूज्य पिता श्री को भी नेताजी कहते हैं, मुलायम सिंह यादव को, लेकिन नेताजी नाम जब लेते हैं तो एक ही व्यक्ति दिमाग में ध्यान में आता है, सुभाष चंद्र बोस। आज 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की हवाई जहाज की दुर्घटना की खबर आई थी। पर उनकी मृत्यु का तो कोई अभी तक कंफर्मेशन हो ही नहीं पाया है। बहुत से लोग कहते हैं वो जिंदा हैं, बहुत से लोग कहते हैं उसके बाद हादसे के बाद काफ़ी देर तक जिंदा रहे। 18 अगस्त 1945 को जब दूसरा विश्व युद्ध समापन की ओर बढ़ रहा था, ताइहोकू तत्कालीन ताइवान में ताइहोकू जगह उस समय कहलाता था वो स्थान, उसमें एक हवाई जहाज की एक्सीडेंट में नेताजी के गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उनके निधन की खबर आई। हालांकि जो उनकी मृत्यु की परिस्थितियां थी उनको लेकर के लंबे समय तक ऐतिहासिक विवाद और विभिन्न मत चल रहे हैं, अटकलें चल रही, लोग कुछ कह रहे हैं, पर साहब दबंग व्यक्तित्व के स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर आज उनका बलिदान दिवस है तो भाई ये गीत हम उनके अर्पण करते हैं, क्योंकि बचपन में जो जय हिंद नारा है ना, वो हमने नेताजी की तरफ से सुना और सीखा था, और स्कूल में छोटे छोटे बच्चे गाते थे।

0: का कदम नन्ना मुन्ना रही हूँ।
1: बचपन में ये गीत स्कूल में बहुत गाया होना, भाई स्कूल में बड़ा पॉपुलर था, जय हिंद। और हमारे महेंद्र बजारिया साहब कहते हैं कि बड़ा अप्रोप्रिएट गीत लगाया आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए, अगर हम आज उनकी पुण्यतिथि मान लें। वैसे आज के दिन वो हवाई दुर्घटना तो हुई थी जिसमें वो जख्मी हुए थे, उसके बाद अटकलें ही अटकलें। जय हिंद, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा ये गीत, ये भावना, ये जज्बात उस वक्त, भाई इस बात पर भी लोग हैरान हैं कि आजादी के बाद कैसे उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब तो खैर भाई फिर से सम्मान दिया गया है उनको, पर नेताजी डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम द इंडियंस एंड पाकिस्तानी, क्योंकि उस वक्त एक ही इकट्ठा इंडिया था, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो दोनों मुल्कों के लिए सांझी लड़ी जा रही थी। राइट,
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और रेट हम बता देते हैं भाई, स्विफ्टली के रेट है इस समय एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.44 रुपीस, पाकिस्तानी मुद्रा पाकिस्तानी करेंसी में 375.34, श्रीलंकन रुपए 448.88, बांग्लादेशी टके 165.35 और अफगान अफगानी 88.9।
5: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: Leica Gold.
4: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Sona, well, the gold is sold at the rate of 104 point, kitna badla kuch ke wahi chal raha rate purana, dikhta hu abhi. Yes, 104.47 pounds per gram.
4: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: अपना गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation,
2: in Dubai.
3: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Onslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
5: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद
6: भी। बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट Onslow, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
4: सितंबर महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
7: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
8: ए तमे स्त्री अमने जे गए पुरुष हो ना खोटा होगोवानो बंद करो।
4: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रहा छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जान मा। हवे राइसली, पॉटर्समार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931-534-270। नाटक नु नाम याद राखजो
9: हालो पटेल भाईनी जान मा।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
2: हेलो रे हेलो आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पर रंगा से स्टार्ट अप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क

0: दिल तो मेरा भी करता है कि उन सबके नाम लूं, उन्हें धन्यवाद दूं, दिल की गहराई से शुक्रिया कहूं जिन्होंने भाई संदेश भेजे हुए हैं, मैं अपने दिल पर लिख कर ले जा रहा हूं, दुआ दूंगा। कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। देशभक्ति का गीत था।
1: રેડિયો માં રવિ શર્મા ને સાંભળવાનું નહીં છોડું।
0: સિતારો કો નજરો મેં મહેફૂઝ રખ લો, બહુત દૂર તક રાત હી રાત હોગી, हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। रवि शर्मा को इजाजत दीजिए और बाली ब्रह्म भट्ट का इंतजार कीजिए। हैव अ सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम मी नाउ।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम।
1: दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम, ओ दिल तेरा है मैं भी।
2: वाह वाह वाह, ऐसा लगा कि गाना एकदम बीच में ही अटक गया, बट दैट वॉज द एंड ऑफ द सॉन्ग। एंड अरुणा ईरानी जी, वाओ, शी इज 80 इयर्स यंग, ओवर 500 फिल्म्स, सोचो व्हाट अ पॉपुलर नेम। हिंदी में, कन्नाड़ा, मराठी, गुजराती, इन्होंने सब जमानों में एक्टिंग की। सो वर्सटाइल, एन एक्ट्रेस एंड अ डायरेक्टर, दैट्स राइट। And born on 18th of August 1946 in Mumbai. So, a proper Mumbaikar bolo na, ek jawan ladki 1946 mein jisne janam liya aur bachpan se hi acting karti badi hui. She was she's the eldest of 8 siblings. Unke parents ke 8 bacche, usme se sabse badi Aruna Irani. आपको मालूम है इनका भाई है जो इंद्र कुमार। इंद्र कुमार हैज़ मेड सो मैनी ब्यूटीफुल फिल्म्स, आज भी बना रहे हैं। उनकी खासियत थी कि एक ही नाम, दिल या बेटा, ओनली वन वर्ड टाइटल्स, राजा, मस्ती, फिर इश्क, फिर उसके बाद नेचुरली धमाल, फिर डबल धमाल, फिर ग्रैंड मस्ती, ये सब सीक्वल में आने लगे। लेकिन उन्होंने शुरुआत तो ऐसे ही की थी विद जस्ट वन नेम, दिल, बेटा, राजा, ऐसे। एंड वी यूज टू गो टू द सेम जिम, दर्शन्स जिम इन अंधेरी, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, तो हम बड़ी लंबी बातें करते थे। फिर हमने सोचा कि हम एक्सरसाइज थोड़ी कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं, तो फिर टाइमिंग्स बदल दिए हमने। दैट्स इंद्र कुमार, व्हाट अ वंडरफुल गाय। Always used to call me to his office and we used to sit and discuss the way he used to make movies. Kafi sikha inse maine. He learned, Aruna Irani, you know, she learned dancing while working in films because she could not afford professional training for a master. मास्टर को पैसा देना पड़ता है, वो पैसे तो थे नहीं इनके पास। सो वाइल वर्किंग इन फिल्म्स शी लर्नड डांसिंग, ऐसे पंगे लेते लेते सीख लिया। एंड अवार्ड्स देखो इनके, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऑफ पेट, प्यार और पाप 1985 की फिल्म, बेटा 1992।

0: की फिल्म एंड 31 इयर्स आफ्टर हर डेब्यू बेटा फिल्म में इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला था एंड जो पहली फिल्म थी पेट प्यार और पाप 1985 की शी वॉज एज्ड 39 देन एंड 24 इयर्स आफ्टर हर डेब्यू पहली फिल्म डेब्यू जो की थी गंगा जमुना में 15 साल की उम्र में 1961 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी देन अनपढ़ एज माला सिन्हाज चाइल्डहुड कैरेक्टर फिर छोटे मोटे रोल्स जहान आरा फर्ज उपकार आया सावन झूम के विद महमूद इन औलाद हम जोली देवी नया जमाना देन कारवां 1971 में बॉम्बे टू गोवा गरम मसाला दो फूल फर्ज बॉबी फकीरा सरगम रेड रोज लव स्टोरी रॉकी व्हाट अ रॉकिंग लेडी दैट्स राइट इनका रिकॉर्ड है शी इज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दैट इज 10 नॉमिनेशंस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला थैंक गॉड at the Film City, 57th Film Fair thi, and that was on 29 January 2012. Main London pahuncha, aur wahan pe Film Fair Awards hua. Wahan pe she was given the Lifetime Achievement Award, and that was hosted by Shah Rukh Khan and Ranbir Kapoor. Yaad hai na? Aapko. Anyway, in 1980s and 90s, she switched to playing motherly roles. Jaise ke film Beta, jahan pe unko मिला एंड देन हर लेटेस्ट करियर स्विच टू टीवी टेलीविजन परफॉर्मिंग कैरेक्टर रोल्स वेरियस सीरियल्स ऑल्सो टुक अप डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ टीवी सीरियल्स सो नन अदर देन अरुणा ईरानी वी आर रिमेम्बरिंग एंड विशिंग हर अ हैप्पी 80th बर्थडे
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can fetch up to 129 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
5: Dad, dad, dad.
6: What's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
8: आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
8: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 आवर लाइन

0: दैट वॉज हर डेब्यू. शी वॉज 15 ईयर्स यंग 1961 में. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ अरुणा ईरानी एंड अवधि डायलैक्ट. वो फिल्म की अवधि डायलैक्ट जो थी उसमें. एंड शी वॉज
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: वो गाना आप देखोगे. म्यूजिक तो ऑफ कोर्स नौशाद जी का था. इन्होंने हेमंत दा को गवाया था. बहुत बेहतरीन अदा से हेमंत दा ने वो आवाज जो उन्होंने निकाली. और एक टीचर जो अपने बच्चों को पेड़ के नीचे सिखा रहा है वो. एंड द लिरिक्स वर ब्यूटिफुली रिटन बाय शकील बदायूनी. बट इट वाज पिक्चराइज्ड एंड वन ऑफ द चिल्ड्रन दैट इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन वाज अरुणा ईरानी. सो आप नेक्स्ट टाइम देखोगे वो गाना फ्रॉम गंगा जमुना, यू विल सी हर इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. दूसरा नेक्स्ट गाना जो मैंने चुना है, आपको मालूम है फिल्म कुदरत में वो एक कितना खूबसूरत गाना जो किशोर दा ने गाया था, हमें तुमसे प्यार कितना है ना, तो वो ही गाना परवीन सुल्ताना जी ने भी गाया आर डी बर्मन के संगीत से. एंड इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन अरुणा ईरानी. सो नेक्स्ट गाना मैं आपको वो सुनाऊंगा जो परवीन सुल्ताना जी का गाना. हमें बहुत मौका नहीं मिलता ये गाना सुनाने को, लेकिन आज एक अच्छा मौका मिला है तो सुनते रहिएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणा ईरानी. मेरा उनका उनके साथ काफ़ी कनेक्शन है बिकॉज एक फिल्म थी छोटे सरकार गोविंदा जी की. डायरेक्टर थे विमल कुमार. विमल कुमार ने 1996 में मेरे से एक गाना गवाया था गोविंदा जी के लिए, मैं आया हूँ यहाँ से जहाँ से वो बड़ा ऊंचा घराना है. आनंद मिलिंद का संगीत था और पागल खाने वाला गाना था पागल खाना का. तो इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन गोविंदा. तो गोविंदा की जो आंट है उस फिल्म में वो है अरुणा ईरानी. एंड देन दूसरी फिल्म जिसमें मैंने म्यूजिक दिया, हम तुम्हारे हैं सनम, उसमें मैंने एक गाना जो दिया, तो उसके अंदर आप देखो तो शी इज़ द मदर ऑफ माधुरी दीक्षित. एंड दैट इज़ 2002 की फिल्म है. शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, केसी बोकाड़े जी की फिल्म. एंड उसमें जो मैंने किया था वो म्यूज़िक, तो हम जब भी डिस्कस करते हैं तो बोलते बाली हम दोनों जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दोज टू फिल्म्स. So it's so sweet to share it out with you.
1: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: You're listening to Bali Brahmbert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
7: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पूरा.
6: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: बाय।
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
11: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
12: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
13: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
14: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNC

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
3: Bikaner wala, parampara bhi.
4: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
5: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: Across London, this is Ballybrambat on Leica Gold.

0: was with Mehmood Mannadi.
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.
0: फिल्म अनोखी रात, उसमें गाना है आशा भोसले जी का गाया हुआ, रोशन का संगीत, इंदिवर की लिरिक्स. पिछला गाना जो था वो चित्रगुप्त का संगीत था. ये अनोखी रात 1968. मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो.

0: Aruna Irani is married to Kuku Kohli, director, writer, editor, screenwriter, जिन्होंने हमारे अजय देवगन को सबसे पहला ब्रेक दिया विद फूल और कांटे फिल्म में. कुकु कोली ही वॉज द असिस्टेंट ऑफ राज कपूर इन फिल्म बॉबी सत्यम शिवम सुंदरम प्रेम रोग दैट इज कुकु कोली हिमसेल्फ.
1: थोड़ा रेशम लगता है.
0: उनका रियल नाम है अवतार कोली, बॉर्न इन पेशावर.

खयाम साहब का कमाल और गुलजार साहब की लिरिक्स, ये गाने से ही आपको पता चल गया होगा कि रेस्ट ऑफ द आवर इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। संपूरन सिंह कलरा, बोर्न ऑन 18th of August 1934 इन दीना पंजाब, दैट इज झेलम डिस्ट्रिक्ट विच इज नाउ इन पाकिस्तान। मैरिड टू राखी, राखी गुलजार, मैरिड इन 1973। उसके बाद ऑफ कोर्स झगड़े भी हुए, सेपरेशन भी हुआ, बट दे नेवर गॉट डिवोर्स्ड। उनकी डॉटर मेघना गुलजार, वेरी फेमस डायरेक्टर। सो द लिरिसिस्ट, पोएट, ऑथर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, कौन सी लाइन इन्होंने नहीं छोड़ी एक्सेप्ट एक्टिंग। तो देखा जाए तो एक्टिव सिंस 1956, 70 ईयर्स टिल 2026। वी विश हिम अ लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ एंड विश ही कुड कीप ऑन गिविंग अस ऑल द वंडरफुल सॉन्ग्स दैट ही राइट्स फॉर अस। अब देखा जाए तो 70 ईयर्स में इन्होंने क्या पाया। ही हैज़ वन अप टू नाउ 43 अवार्ड्स एंड 92 नॉमिनेशंस। इनको पद्म भूषण 2004 में मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2002 में। He won 8 National Film Awards and 22 Filmfare Awards. At the 81st Academy Awards, he won the Academy Award for Best Original Song, Jai Ho. Yaad hai na? Shared with A.R. Rahman, Slumdog Millionaire. Jiske liye unko Grammy Award bhi mila. So, dekha jaye to, he won the most Filmfare Awards for Best Lyrics. Best Lyricist ka award jo... बेस्ट लिरिसिस्ट के अवार्ड जितने भी इनको मिले, 13 अवार्ड, द मोस्ट, एज वेल एज 4 फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग, फिल्म के डायलॉग्स, एंड ऑल्सो अवॉर्डेड द 2012 इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। अभी आईफा अवार्ड्स में देखा जाए तो कजरा रे कजरा रे कजरा रे, उसमें तो अवार्ड मिलना ही था, बंटी और बबली वाला 2006 का। उसके बाद सारे नॉमिनेशंस थे आईफा अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट के। फिल्म फेयर अवार्ड्स में इनको आनंद फिल्म और नमक हराम, ये दो फिल्मों में बेस्ट डायलॉग्स के लिए अवार्ड्स मिले। एंड देन आंधी फिल्म में बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर, इन्होंने डायरेक्शन जब की फिल्मों की तो मौसम फिल्म में इनको बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। फिर दूसरा बेस्ट डायरेक्टर कौन सी फिल्म थी, घरौंदे एंड देन गोलमाल एंड थोड़ी सी बेवफाई में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला। किनारा फिल्म एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिसमें इनको नॉमिनेशन मिला था, लेकिन मेरे हिसाब से उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। बस घरौंदा में और गोलमाल, थोड़ी सी बेवफाई, मासूम, ये सब फिल्मों में, इजाज़त फिल्म में इनको बेस्ट लिरिसिस्ट का

0: अवार्ड मिला, लेकिन फिल्म रुदाली, फिल्म रुदाली में नॉमिनेशन मिला था, लेकिन दिल हूं हूं करे वो तो मेरा फेवरेट है। एंड देन बेस्ट स्टोरी फॉर माचिस, बेस्ट डायलॉग फॉर माचिस अवार्ड्स मिले, बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ दिल से छैया छैया, यू नो दैट, बेस्ट डायलॉग ऑफ साथिया 2003 की। सो ये सब फिल्मों में इनको अवार्ड्स मिलते रहे, आज भी मिलते रहेंगे और मिल रहे हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, आठ अवार्ड्स, फिल्म कोशिश, मौसम, मेरा कुछ सामान फ्रॉम द फिल्म इजाज़त, उसकी लिरिक्स के लिए उनको अवार्ड मिला गया। एंड यारा सिली सिली फ्रॉम द फिल्म लेकिन, एंड देन बेस्ट बायोलॉजिकल बायोग्राफिकल फिल्म थी पंडित भीमसेन जोशी। एंड माचिस फिल्म में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। आई मीन आई कुड गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट हिम, बट इन्होंने गैरेज में काम किया था जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, हिज फैमिली स्प्लिट अप, ही हैड टू स्टॉप हिज स्टडीज, जो पाकिस्तान में स्टडी कर रहे थे वो वहाँ झेलम डिस्ट्रिक्ट में, एंड ही हैड टू गो टू बॉम्बे टू सपोर्ट हिज फैमिली। He took up many small jobs to survive. एक जॉब था एक गैरेज में, विचारे मोटर्स ऑन बेलासिस रोड बॉम्बे, मैं गया हूँ वहाँ। He used to touch up accident damaged cars. And his father was totally against him for choosing writer's career. And he took the pen name Gulzar Deenvi. Later on he changed it to simply Gulzar. अब जब पेंटिंग का जॉब करते थे उनको काफ़ी टाइम मिलता था टू रीड एंड राइट एंड अटेंड द कॉलेज, बट ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद PWA, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, और ड्यूरिंग द PWA मीटिंग्स शैलेंद्र जी, यू नो द ग्रेट लिरिक राइटर, उन्होंने और बिमल रॉय ने उनको एनकरेज किया, बोले फिल्मों में ज्वाइन हो जाओ। दैट्स वाई ही कॉल्स शैलेंद्र हिज फ्रेंड, philosopher and his guide. Career dekho to he started his career under directors Bimal Roy and Rishikesh Mukherjee. He described Bimal Roy in his book Ravi Par, ek book hai. His debut as songwriter in film Bandini mein, usme sare gaane Shailendra ji ne likhe hue the, unhone kaha nahi aap ek gana likho, unhone gana likha Mora Gora Ang Laile. उम्र थी 29 साल की, ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, एंड संग बाय लता मंगेशकर, दिस वॉज हिज एंट्री, द एंट्री ऑफ गुलजार इन द फिल्म इंडस्ट्री। वो एक गाने से शुरुआत हुई, फिर कुछ आशीर्वाद फिल्म थी, ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म स्टारिंग अशोक कुमार, उसमें ही रोड द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म, लिरिक्स ऑफ द फिल्म, उनको अवार्ड नहीं मिला, अशोक कुमार को मिल गया फिल्म फेयर एंड नेशनल अवार्ड। देन खामोशी 1969 में, उम्र थी 35 साल की, गाना कौन सा था, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, एंड दैट वॉज अ हिट। फिर दो गाने फॉर गुड्डी, हमको मन की शक्ति देना, विच इज लाइक एन एंथम इन स्कूल्स। सो इनके अवार्ड्स डिस्कस किए हमने, इन्होंने 100 से 150 फिल्मों के गाने इन्होंने लिखे हैं, फिल्म्स डायरेक्ट भी की, अब इनके गाने सुनते हैं हम। वी आर विशिंग गुलजार साहब हैप्पी 92nd बर्थडे। मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 129 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: जैमिन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्म भट्ट। बाली ब्रह्म भट्ट। जैमिन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
3: अपनों के करीब।
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation.
7: In Dubai.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
11: T's and C's apply.
12: Anoop Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anoop Chalota.
13: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
12: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
14: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
15: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Ilford. Ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
17: Bikaner wala. Parampara bhi.
18: Famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch aapka intezar kar raha hai. Milte hain 513-519 Cranbrook Road, Gansill, Ilford. IG26HA. Call 07555-50-6015.
19: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
19: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
21: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
22: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
23: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
5: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
6: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
7: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
6: Jaimin Foods Mango Pulp. Available.

0: What a beautiful song written by Gulzar Saab. He insisted, Dil dhak dhak kare nahi, hoon hoon kare, because of a folk song that he had heard.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: वो क्या था, दिल हूँ हूँ करे, उन्होंने एक आसाम का एक गीत सुना था विच वॉज ए फोक सॉन्ग, जिसमें उन्होंने लिखा था दिल होम होम करे कोरे, दिल होम होम कोरे ऐसा लिखा हुआ था. तो उन्होंने कहा कि ये हूँ हूँ में जो फील आएगा ना, वो पर आर्ग्यूमेंट भी हुई उनकी डायरेक्टर से, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, सबके साथ उनकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, लेकिन उन्होंने बस अड़ के बैठे थे कि नहीं यही रखिए आप, दिल हूँ हूँ करे. सो उन्होंने रख लिया एंड इट वाज करेक्ट, क्योंकि ओरिजिनल एसएमईस का था बुकू होम होम कोरे, उसमें से इन्होंने दिल हूँ हूँ करे एंड he was right. Gulzar Saab, 92 today and a winner of 92 awards. Wow.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.
0: Salil Chaudhary ka sangeet.

0: One mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: उम्मीद है आपको ये ट्रिब्यूट पसंद आया. गुलजार साहब, इनके इतने गाने हैं, आई कुड हैव डन अ 3 आवर प्रोग्राम ऑफ इट. लेकिन हमारे अरुणा ईरानी जी भी तो थी, और नेक्स्ट आवर में आ रहे हैं दलेर मेहंदी साहब. सो जुड़े रहिएगा. फिल्म है गोलमाल.

0: बोलो तारारारा हैप्पी बर्थडे दलेर मेहंदी
1: अक्रॉस लंदन दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड

And what can I say? That's Dilerpa ji with all his hit songs. इन्होंने रिलीजियस गाने भी इतने किए हैं, हनुमान चालीसा से लेकर बेस्ट ऑफ गुरबानी, बाबा नानक, मेरे नाल नाल, खालसा, फिर मेरे राम, एक अरदास भात किरत की, अल्लाहू मौला साई, एंड देन बिस्मिल्लाह, एंड 300 साल गुरु दे नाल, से ये सब इन्होंने रिलीजियस में भी बहुत हिट रिकॉर्ड्स निकाली. एंड देन मूवी सॉन्ग्स थे साडे नाल, जियो रे बाहुबली, दंगल. मतलब दलेर मेहंदी ने शुरुआत की थी विद एल्बम्स. एंड व्हेन ही मेट मी ही वाज सॉर्ट ऑफ सेइंग, पाजी असी फिल्मा दे गाणियां नाल असी नहीं ना बनाया, असी बनाया एल्बम्स दे नाल, तुसी भी एल्बम करया करो. सो मैंने भी गब्बर मिक्स और ऐसे एल्बम्स बनाए और उसमें से भी अवार्ड्स मुझे भी मिले. सो हम दोनों पैरेलल भाई. एंड मिका के साथ अगर आप मेरा फेसबुक भी देखोगे तो हम तीनों भाई साथ में हैं उसमें फेसबुक पे. सो आई एम सो प्राउड ऑफ दीज टू ब्रदर्स. एंड दिलेरपा जी, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एंड आई ऑलवेज सेंड हिम अ मैसेज. इफ ही इज फ्री देन ही कम्स अलोंग ऑन द रेडियो एंड ही टॉक्स टू अस. सो वी आर विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड विशिंग हिम अ लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ बिकॉज ही इज अ वेरी इंडिविजुअल आर्टिस्ट. इन्होंने विश्व भर में इतना अच्छा नाम कमाया. सो दिलेरपा जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम गोना ट्राई एंड कॉल हिज नंबर. अगर मिल गए तो अच्छा रहेगा. लेट्स गिव इट अ गो. या दिलेरपा जी. फोन तो बज रहा है.

0: आज बिजी होंगे, हर तरफ प्रेस जमी होगी वहां पे, और इंटरव्यूज के बाद इंटरव्यूज।
1: सत्या भाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: पाजी पाजी, तुसी लाइव हो रेडियो लाइका रेडियो ते, थाउजेंड्स ऑफ लिसनर्स आर लिसनिंग टू यू, ते जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाइयां पाजी।
1: बहुत थैंक यू भाजी, बाली भाजी मजा आ गया, और तुहाडा बहुत शुक्रिया पूरे जिन्ने व्यूअर्स आगे सुनने वाले जिन्ने फैंस ने।
0: हां जी,
1: मैं सारा बहुत प्यार है तुहाडी मेहरबानी।
0: आज की हो रहा उते बर्थडे दा, की हो रहा उते इंतजाम?
1: ਪਾਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਿੰਨ ਕੇਕ ਕਟਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ।
0: ਅੱਛਾ,
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਕੇਕ ਕਟਾਏ ਔਰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਠੇ।
0: ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੈ ਨਾ?
1: ਸਹੀ ਗੱਲ।
0: ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾੜੀਆਂ। थैंक यू पाजी, साढ़े लिसनर्स वास्ते बस एक लाइन दे दियो, फिर मैं चल जाऊंगा।

0: बोलो तारा रारा हो जावे या ना ना ना ना ना रे।
1: ओके ओके
0: थैंक यू पाजी।
1: मस्ती भरी रात है, सुनकड़ियों का भी साथ है, और जीने का ले ले मजा, और डरने की क्या बात है।
0: दिल खुश हो गया मेरा, बड़ी देर तो गल नहीं हुई, मैं फोन करांगा रज के गल करांगे आपां।
1: थैंक यू भाई, डन, थैंक यू,
0: लव यू लॉर्ड्स। There you go, that was Daler Paji, surrounded by so many people, tin tin cakes काट लिए और तो भी फोन उठा लिया और उन्होंने बात भी की, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपको अच्छा लगा। अभी कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन में क्या होने वाला है मैं अभी बताता हूँ आपको।

अभी आपने सुना विक्टोरिया 203। अगर मैं इसकी जगह एक और गाना आपको सुनाऊं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। एक आवाज ऐसी जो आपको ताजा कर देगी, सुनिएगा, इतना मजा आएगा। ओके, रेडी?

0: ये बात हुई ना, अब ये आवाज अगर आप लाइव बैठ के सुने तो सोचो क्या मजा आए। लाइका रेडियो नेटवर्क एंड सून टू लॉन्च स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स टीम्स अप विद अनुज चोपड़ा फाउंडेशन फॉर एन इवनिंग फिल्ड विद गजल्स एंड एलिगेंस फीचरिंग लेजेंडरी अनूप जलोटा जी। Hosted by none other than हमारी अपनी अनीसा नासर जी। Yes, on Sunday 30th of August at Queen's Theatre, Romford from 6 PM। और मैं वहाँ 5 बजे से बैठा रहूँगा बिकॉज मैं उनसे मिलूँगा, हम बातें करेंगे इन द ग्रीन रूम अनीसा नासर जी के साथ और उनके साथ फोटोज खिंचाएंगे, फिर मैं मेरी सीट पर चला जाऊँगा। आप भी आएंगे ना? Now you could be very lucky. We have 2 tickets to give away. Simply send the word ghazals. Ghazals ka spelling aapko de deta hu. G-H-A-Z-A-L-S. G-H-A-Z-A-L-S. For you to be in to win. Aur ghazals ke saath aapko kya karna hai? Aapka naam, full name, telephone number aur email ID. बस ये 3 मुझे दे दिए और साथ में गजल्स लिख दीजिएगा। एंड विनर्स टिकट्स कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस, वहाँ से ऑन द इवनिंग ऑफ द शो। योर नेम एंड नंबर विल बी यूज्ड फॉर आईडी पर्पसेस, ये तो आप समझ गए ना। नाउ queenstheatre.co.uk, यहाँ से आप टिकट खरीद भी सकते हैं अगर आप नहीं जीते तो। इफ़ यू डोंट विन डोंट वरी, यू कैन बाय टिकट्स फ्रॉम queenstheatre.co.uk. Don't forget the UK's first Ghazals radio station. Laika Radio Ghazals launches soon and I'm really looking forward to that one. Hari Haran ji se baat hui, Anup Jalota ji se baat hui, Suresh Vadkar ji se baat hui, sab log itne khush hain, aap unki awaazein sunenge. Lekin aaj competition ka baat चल रहा है, कंपटीशन की बात चल रही है, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन गिविंग यू 2 tickets फॉर द 30th ऑफ ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड फ्रॉम 6 PM। सो भेजिएगा गजल्स, पूरा नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। गुड लक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 129 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold. Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation,
6: in Dubai.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
12: Southall Travel can take you there.
13: Southall Travel, at all protected.
14: Hounslow, ab India ka favorite swad, bilkul aapke paas.
15: Bikaner wala, parampara bhi.
16: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
17: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना.
18: Disha Rice, now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash & Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
3: पल भर के लिए
4: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रॉक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए. संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Like a Radio Network.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
7: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
8: अब आपको एक छोटी सी कहानी बताना जरूरी है. अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपको गाना जो मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका मज़ा चला जाएगा. कवि प्रदीप जी ने एक फिल्म थी नास्तिक 1954 में, उन्होंने सी रामचंद्र म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ एक गाना तैयार किया और इसके बोल थे, देख तेरे संसार की क्या हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. तो उसके जवाब में साहिर लुधियानवी, हमारे जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, उन्होंने मदन मोहन जी के साथ बैठकर और फिर एक गीत लिखा इन रिप्लाई टू व्हाट वाज रिटन, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान. कवि प्रदीप जी ने जो लिखा था उसकी जगह इन्होंने लिखा, देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई. तो रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का गाना आप सुनिए, जहाँ पे साहिर लुधियानवी जी ने उस गाने का जवाब दिया जो कवि प्रदीप जी ने लिखा था. अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक साहिर लुधियानवी.
9: देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान.
10: काई बोले शैतान.
9: देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान. भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान.
10: ठीक है भगवान.
9: बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान. उन्हीं की पूजा प्रभु को प्यारी, जिनके घर लग

0: मान कितना बदल गया भगवान।
1: सुनकर इस पापी को थानो, सुनकर इस पापी को थानो, बदल न लीजो अपनो ठिकानो। हे भगवान भारो थारो प्रेम पुराणो, भारो थारो प्रेम पुराणो, हम है थैले तुम हो खजानो। भरते रहियो दाज की झोली, देते रहियो दान, तुम्हारी जय जय हो भगवान, तुम्हारी जय जय हो भगवान।
0: तो कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान।
2: धन वाले हैं बड़े मछंदर, सोने के बनवाए मंदिर, भगवान रहते इनके अंदर, खरी खरी कहता है कलंदर।
1: अबे बंदर
2: बन बैठा है इस दुनिया में धर्म।

0: कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान। कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान।
1: So there you go. कैसा लगा आपको? तो आगे जाते हुए हम कुछ आपको खबर देते हैं कि लंदन शहर में क्या क्या हो रहा है और होने वाला है। जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद आफ्ताब शिवदासानी, सिंगर्स आमंत्रिका मयूरी पटालिया, सैटरडे 3rd ऑफ अक्टूबर एट हैरो आर्ट्स सेंटर। टिकट्स फ्रॉम बॉक्स ऑफिस, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Like a radio and Sanjay Kapoor live. That's right, Jay's Entertainment brings to you Bollywood Legends live in London with Sanjay Kapoor, singers Amantrika and Mayuri Patalia, Sunday 27th September at Leicester's De Montfort Hall. Exclusive radio partner Like a Radio.
2: Like a Gold.
3: Feel good classics all day. Like a gold.
4: Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322727274। बुक योर टेबल टुडे।
9: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
10: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
11: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा नरंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा।
12: छोटी छोटी गईया, छोटी
11: भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Now visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323-073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 0208574-8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
7: रंजिश सही दिल ही दुखाने।
8: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
9: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Stop-Loss, ab her Stop-Loss.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
3: Hello, wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra Monday to Friday 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा नरंगमा लंडन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
5: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से
2: लाड लडाओ लाला ने लाड लडाओ।
1: स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा।
2: छोटी छोटी गैया छोटे
1: भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092 4667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Eureka Gold Traffic and Travel.
1: This is Martin with your travel. In the Wembley area, the A404 High Road is closed in both directions between Napier Road and Ealing Road. It's due to a building fire. Traffic heavy on the surrounding roads. A312, the Parkway, still heavy southbound before you get to the M4 Junction 3. The A4020 Uxbridge Road, heavy between the Parkway and Southwell Park. And it continues to queue on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. Slowing on the A406 North Circular Road, that's in both directions. Before you get to the Hanger Lane Gerrity, to the Tube, and no service on the Piccadilly line between Uxbridge and Cock Fosters due to engineering works. That's your latest traffic and travel.
2: From the first time they lose a
3: baby tooth, look, Mum,
2: to the countless times they forget to mention their
4: ingredients for food tech tomorrow,
2: to the last time you hear that school was
5: alright.
2: Kids grow up fast. Luckily at Tesco, we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
0: Yeah, yeah, yeah, like a gold.
6: Like a gold.
7: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
9: पल भर के लिए
10: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25 बुक टिकट्स एट heroartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Leica Radio Network.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: Honslo, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
5: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
6: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 High Street, Honslo, TW3 1QT,

0: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
3: Dad.
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
7: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
9: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of August and get up to $400. Or lose the discount after. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
12: Oh, yeah.
11: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
13: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavours from around the world, you can make every meal memorable.

0: Andy Shah on Gold Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So £1 getting you 89.23 Afghani, 165.15 Bangladeshi taka, 449.3 Sri Lankan rupees, 375.7 Pakistani rupees, 129.59 Indian rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold trading at £103.50 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: Let me ask you a very quick question.
3: जी.
1: अगर कोई काम आदमी गुस्से में करे तो usually ठीक होता है कि नहीं होता?
3: होता है.
1: होता है?
3: जी.
1: Oh, what makes you say that?
3: I've done that.
1: Okay. That kills that conversation.
3: What am I doing these days? Am I killing all the conversations?
1: You are. You're very good. You don't realize. तुम्हारे पास ना hidden हुआ art है. कैसे कॉन्वर्सेशन का करते हैं
3: और अच्छा, आप समझो, मैंने
1: हर रोज तुम करती हो हर रोज करती हो तुम सो हो गया काम
3: आप समझ लो
1: बिकॉज द आइडिया वाज कि तुम ये कहोगी मुझे कि नहीं गुस्से में तो कभी कोई काम ठीक नहीं होता खराब होता ना और सेड वेल हैंग ऑन अ सेकंड बिकॉज द सर्वे हियर इज सेइंग दैट जो काम गुस्से में करे वो यूजुअली ठीक होता है बिकॉज यू वांट टू गेट इट डन लेकिन एज यूजुअल अश्विनी स्ट्राइक्स अगेन
3: चार काम और ज्यादा कर लेती हूँ ये
1: दस पेंस किसने डाले इसमें के लगे हुए हैं इतना वैल्यू फॉर मनी मुझे मिल रहा है इस वक्त ये या वो
3: जी
1: पहला गाना है मिलती है जिंदगी में फ्रॉम आंखें लता मंगेशकर सेकंड सॉन्ग इज मुकेश का मैं पल दो पल का फ्रॉम कभी कभी
3: दोनों बड़े खूबसूरत हैं मैं पहले गाने के साथ जाऊंगी
1: पहले गाने के साथ जाएगी शुक्रिया
3: जी
1: थैंक यू टू एवरीबॉडी हू वोटेड माय वोट गोज टू मैं पल दो पल का थैंक यू एवरीबॉडी वेरी काइंड ऑफ यू अश्विनी इज नेक्स्ट द नेक्स्ट सॉन्ग हैज वन वेरी काइंड ऑफ यू ऑल ऑफ यू टू पार्ट एज आई वाज वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट इफ यू एंजॉयड वन सॉन्ग ऑन ड्राइव Give me another go tomorrow from 4 o'clock. Don't forget Gold Night. Ashwini's next. Bye-bye for now.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. In the Wembley area, the A404 High Road closed in both directions between Napier Road and Ealing Road is due to a building fire. Traffic heavy on the surrounding roads. The A312, the parkway, is now east southbound before you get to the M4 Junction 3. Still slowing on the A4020 Uxbridge Road between the parkway and Southall Park. The A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to North Holt Station. It's slowing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hanger Lane Gyratory to the Tube, and severe delays on the Bakerloo line between Stonebridge Park and Harrow and Wealdstone due to an earlier track fault at Harrow and Wealdstone.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Start to

0: Mamster Golgappe at Golgappiyan da Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
3: The Evening Show with Ashwini.
4: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.
5: ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ। 18th of August हम और आप साथ में मनाएंगे टेरिफिक ट्यूजडे शाम 7 से 10 बजे तक। 3 घंटों में क्या क्या होता है फीचर्स आप सबको पता ही है, और हमेशा की तरह भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। सारे धुरंधर आ रहे हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगवा रहे हैं, मेरे हालचाल पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों के हालचाल पूछ रही हूँ। ऐसे अब बस हमारे शो की शुरुआत हो चुकी है। इस आवर का आगाज़ हमने किया है डर फिल्म

0: तो हमेशा की तरह एक सवाल, एक लाइफ थियरी और बहुत सारी मस्ती। आज का सवाल थोड़ा सा स्कूल डेज में ले जाऊं आप लोगों को, है ना, स्कूल डेज की याद दिलाते हैं। अच्छा, ऐसी एक आदत जो आपने बचपन से पाल रखी है और जो आप किसी भी एज में चले जाए तो भी आप उसको बिल्कुल रिचुअली फॉलो करते हो। मैं एक देती हूँ एग्जाम्पल अभी। फॉर मी, वेन एवर आई एम रीडिंग समथिंग, यू नो, स्पेशली विद द स्क्रिप्टिंग, बीइंग एन एक्टर, तो जब मैं स्क्रिप्ट लर्न करती हूँ तो बचपन में कभी तो मम्मी पापा ने अच्छी आदत लगाने के लिए ये डर मन में बैठा दिया था कि बेटा अगर तुमने बुक जिसमें से तुमने पढ़ाई की, लर्न की, अगर वो बुक खुली छोड़ के अगर तुम चले गए बिना बुक बंद किए तो तुमने जो भी याद किया है वो सब तुम्हारे दिमाग से डिलीट डिलीट डिलीट हो जाएगा। तो तब से जो वो चीज़ बैठी है ना जहन में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगर कुछ है, बुक है तो डेफिनेटली बंद करके ही रखी जाती है, लेकिन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लर्निंग पार्ट अभी भी होता है ना, अभी इट्स लाइक नाना आहा, मुझे रिस्क ही नहीं लेनी भाई एक भी डायलॉग यहाँ के वहाँ नहीं होना चाहिए, तो मैं प्रॉपरली गुड गर्ल जैसे फिर से वो बुक ना ऐसे बंद करके अच्छे से रखती हूँ। बुकमार्क तो होता ही है, बट दैट इज़ वन थिंग विच आई डू। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्कूल डेज में आपने कभी तो मम्मी पापा ने सिखाई थी और आपके पास में आज तक आपने उसे खास जतन करके रखा है, बताइएगा जल्दी जल्दी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपीज। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.

0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.

0: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
1: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
0: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
2: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: स्टार्ट

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
4: लंदन जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन लंदन. बॉलीवुड एक्टर आफताब शिव दसानी. प्लेबैक सिंगर अमन त्रिखा और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में सैटरडे 3rd October 7 PM हैरो आर्ट सेंटर. टिकट्स अभी बुक कीजिए हैरो आर्ट सेंटर बॉक्स ऑफिस से. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल 0777-161-5800. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
5: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
6: Leica Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Cool aur online suno leicagold.com pe.
5: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो 7:31, इट्स 7:31। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो लाइफ थियरी में कुछ सुनाएगी आज अश्विनी? अरे बिल्कुल सुनाएगी, और बड़ी प्यारी और छोटी सी लाइफ थियरी है। आज की लाइफ थियरी का नाम है द 90 सेकेंड रूल थियरी। रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे करियर में, हमारे अपने अनुभवों में, हम सभी इमोशंस महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हमारे मन के मुताबिक चीज़ें होती तो हम खुश होते हैं, और हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। देखिए, जो भी ये सारे इमोशंस हैं, ये इमोशंस फील होते हैं, सभी को होते हैं। और अगर जिनको ये सारे इमोशंस फील नहीं होते तो वो देवता हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई देवता है तो उनके हाथ जोड़ के पैर पकड़ लीजिएगा, शायद वो सही इंसान है जो आपको बहुत ज्ञान दे सके। लेकिन वी ऑल फील इमोशंस। द पॉइंट इज कि अगर आपको सारे इमोशंस फील होते हैं व्हेन इट कम्स टू दुखी होने वाले या गुस्सा होने वाले, तो इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन वो जो भी इमोशन है ना, उस इमोशन को वैलिडिटी दीजिए खुद के लिए। खुद से ही खुद को बताइए कि यस, हाँ तुझे भी दुख हो रहा है, हाँ तुझे भी जेलेसी हो रही है, हाँ तुझे भी इनसिक्योरिटी हो रही है। 90 सेकेंड्स तक ये जो है महसूस कीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप वो इमोशन अपने पास रखते हैं तो बस बेड़ा कर दो, फिर तो चला गया, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। हम दुख में जीते, दुख में मरते जाएंगे, बस यही होने वाला है। 90 सेकेंड रूल जो है यहाँ पे यही कहा जाता है, वैलिड कीजिए अपने उस इमोशन को, उसके साथ रुकिए, महसूस करिए, एंड देन लेट इट गो। व्हेन यू लेट गो तो आपका दुख कम होता है। आई नो कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं, आपकी तरह मैं भी वो महसूस करती हूँ, लेकिन 90 सेकेंड थियरी सभी के लिए काम में आती है, ठीक है। सो इमोशंस हम सबको फील होते हैं, लेकिन उसको कैसे टाटा बबाई करना है ये 90 सेकेंड थियरी बताती है। अगर आपने ये थियरी यूज़ की है पहले, मुबारक, कंग्रेचुलेशंस, आप तो सबके आगे चले गए, और नहीं तो अब से शुरू कर दीजिए। क्या 90 सेकेंड थियरी रूल आप शुरू करेंगे? मुझे मत बताइए, आप ज़रूर अपनाइए। छोटी सी थियरी कैसी लगी आज की थियरी, जरूर बताइएगा।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: The Evening Show with Ashwini. Leica
4: Gold. Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, ansuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m. Yaad

0: latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Like a Gold.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे
4: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो
5: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानो बंद करो
3: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427 नाटक नु नाम याद राखजो
6: 0730099823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4
3: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
9: बीकानेर वाला परंपरा भी
10: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 0779518100
11: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Like our gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 नहीं इंग्लिश में बोल लेते हैं सीधे 129.6 इंडियन रुपी 375.67 पाकिस्तानी रुपी 449.3 श्रीलंकन रुपी 165.17 बांग्लादेशी टाका 88.82 अफगान अफगानी 1.35 यूएस डॉलर्स 175.24 केनियन शिलिंग 63.60 मॉरिशियन रुपी
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.50 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है 7:48 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर 90 सेकेंड रूल वाली थियोरी आपको सुनाई और आप सबको बेहद पसंद आई है और मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि ट्राई करके देखते हैं है ना अरे ट्राई तो करो वर्क करता है भाई जिंदगी में थोड़ा एक्सप्लोरिंग होना चाहिए कि अभी सालों से अगर हम कहीं कई चीज़ें हैं जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो सालों से आप करते आ रहे हो क्योंकि बचपन में आपने सीख लिया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया मुझे जवाब भेजे हैं कि बचपन में कुछ चीज़ों की आदत जो मम्मी पापा ने डाली थी वो कैसे वो अभी भी उनके साथ में है और अपना बचपन वो जी लेते हैं आई थिंक किसी भी इंसान के लिए सबसे खूबसूरत समय जो होता है उनका बचपन का होता है हाँ अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट बीन इन एन हेल्दी फैमिली एटमोसफियर तो डेफिनेटली पर बचपन एटलीस्ट शुरुआत के 5-6 साल तो बड़े अच्छे बीतते हैं कहते ना कि आप 7 साल की उम्र तक जो आप देखते हैं अनुभव करते हैं वही आपकी पर्सनालिटी में आता है हमने काफ़ी बार इस चीज़ पे बात की है और अपने अपने स्वभाव को लेकर जब लोग अवेयर हो जाते हैं जागरूक हो जाते हैं और खुद पे काम करते हैं तो उसका एक सेटिस्फैक्शन लेवल ही अलग होता है इस आवर का आखिरी ट्रैक आप सबको सुना रही हूँ लता मंगेशकर एंड आशा भोसले की आवाज़ में पड़ोसन पन से मैं चली दोनों बहनों ने इतना खूब गाया है ये गाना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अब तो नहीं कर सकते करना चाहते हैं ज़रूर कर लीजिए दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर सो सवाल के जवाब जब जब आपको जो सूझे देते रहिए लेकिन बहुत प्यारे प्यारे जवाब आप सबने भेजे हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सेड थैंक यू कि आपकी वजह से बचपन की ये याद फिर से हमारे साथ आई
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
3: high appreciation.
4: In Dubai.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
10: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
11: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
11: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: अगर साथ में गा रहे होंगे तो कितने कॉन्सेंट्रेशन से गाना पड़ता होगा ना. ऐसे ग्रुप सॉन्ग्स के बारे में मुझे हमेशा लगता है कि कोई एक तो ऐसा मस्तीखोर होगा जो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता होगा. बट आई बिलीव व्हेन आर्टिस्ट कम टुगेदर दैट इज़ ऑल मस्ती भरी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब सारे आर्टिस्ट साथ में आते हैं तो सब मिल के एज अ टीम काम करते रहते हैं. बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भाई इस फ्राइडे मैं नहीं आने वाली हूं, बिकॉज मेरा अपना जो एक प्ले है, थिएटर प्ले है, और तो उस वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी फॉर फ्राइडे. ओके, लेकिन उसके अगले सप्ताह आप और मैं मिलने वाले हैं. सो आपकी और मेरी मुलाकात कल एंड परसों होने वाली है. सो आज कल और परसों है ना, कल आज और कल नहीं, आज कल और परसों. ओके, सो घर घर की कहानी में ज़रा आपको पूछ लें आज का सवाल और सच्ची सच्ची बताना. अच्छा भाई, अगर शादी हो चुकी हैं, कपल्स हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो घर के किसी दूसरे मेंबर का भी नाम आप ले सकते हो या खुद को भी आप नॉमिनेट कर सकते हो. ठीक है, तो कहीं पर भी अगर जाना है घर से बाहर, ओके, किसकी वजह से लेट होते हो? ईमानदारी पूरी अपेक्षित है आप सबसे कि पूरी पूरी ऑनेस्टी के साथ में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे.
1: Leica Radio Network. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, एक पाउंड के बदले आप सबको मिलने वाले हैं 129 इंडियन रुपीस. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
3: लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में अभिनेत्री फिल्म से सारे गमप्पा आप सभी को सुनाया तो यहाँ पे ये मोहतरमा जो है ये भाई साहब को सारे गमप्पा सिखा रही थी। मैंने घर घर की कहानी में आप सबसे सवाल पूछा है कि कपल बोल लो, फैमिली बोल लो, आप के घर में कोई तो लेट लतीफ़ है जिनकी वजह से आप लोग हमेशा लेट पहुँचते हैं कहीं पर भी, किसी भी इवेंट में। वो लेट लतीफ़ इंसान कौन है बताना चाहते हैं? बहुत सारे ऑनेस्ट लोग, उन्होंने तो फटाफट आंसर लिख के भेज दिए। कुछ सेल्फ कन्फेशन वाले लोग भी हैं, वो कन्फेशन लिख के भेज देते हैं कि हमारे पे हम होता है, हमारी वजह से लेट होते हैं। बिल्कुल लिखते चलिए, बड़े मज़ेदार होता है कभी कभी ये देखना कि यार हम रिस्पॉन्सिबल है क्या किसी चीज़ के लिए। व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग्स, कौन है जो अभी भी टाइम को फॉलो नहीं कर रहा है?
0: Like a Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. This is Like a Gold.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: जब खूबसूरत गीत आते हैं तो ऐसे ही कुछ होते हैं। पगला कहीं का, विच वॉज रिलीज इन 1970, उस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में सुनाया आप सभी को ये गीत। मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:36, मतलब इतना स्पीड में यह टाइम निकल रहा है ना। एंड आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं, हर एक गीत पे आप लोग अपने अपने फीडबैक दिए जा रहे हैं, अपनी अपनी यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सवाल मैंने ये पूछा है आप लोगों से कि किसकी वजह से आप जो हैं लेट पहुंचते हैं। अरे बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं, सो बिल्कुल भेजते रहिए आंसर्स। कहीं आपको कहीं जाना होता है तो इज इट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, योर किड्स, आप खुद, मम्मी पापा, जो भी है बिल्कुल बताइएगा ज़रूर। अगला ट्रैक आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या आप जानते हैं कि हारमोनियम ये ओरिजिनली इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये यूरोपियन कंट्री से आया है। पेटेंट इन फ्रांस, अर्ली वेस्टर्न हारमोनियम्स यूज्ड व फुट ऑपरेटेड। जब ये इंडिया पहुंचा तो इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने इंडियन स्टाइल में यूज़ करते आए, इस तरीके से उन्हें कॉम्पैक्ट बनाया और जो जो चीज़ें उसमें मिसिंग लगी अकॉर्डिंग टू रागास उसमें ऐड की गई। इट इनिशियली फेस्ड पुश बैक इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, उसके बाद में जो है इसमें चेंजेस आते गए क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये इंस्ट्रूमेंट तो हमारे अपने काम का है। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीज होती है। आज जब ये फैक्ट मुझे पता चला, आई सेड डेफिनेटली आई नीड टू शेयर दिस विद यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जिस देश में होते हैं हमें लगता है कि ये तो हमारे यहाँ की है ओरिजिनली, है ना। जैसे एक्चुअली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड पीपल फ्रॉम गुजरात, सो महाराष्ट्र और गुजरात में हमेशा ये चलता है कि दोनों ये कहते हैं कि पूरनपोली एंड श्रीखंड, स्पेशली श्रीखंड पे से चलता है कि श्रीखंड हमारे यहाँ का है, एंड महाराष्ट्र वाले बोलते हैं श्रीखंड हमारे यहाँ का है, एंड गुजराती से हमारे यहाँ का है। पूरनपोली के बारे में भी ऐसी डिस्कशन चल रहा है, बड़ा मज़ेदार है भाई ये डिस्कशन, मुझे इतना मज़ा आता है ना। चटकारी लेके सब खाते हैं, लेकिन यस ये हमारे यहाँ की चीज़ है, कितना प्राइड फील होता है ना इस चीज़ में। आने दीजिए आप लोगों के आंसर्स। नेक्स्ट अभी क्या होने वाला है, मुकेश जी की आवाज़ में आनंद फिल्म से मैंने तेरे लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दैट वन इज।
1: Like a extra podcast update.
0: सो एपिसोड नंबर 29 आ चुका है, रवि शर्मा जी इसके होस्ट हैं, एंड जो टॉपिक है दैट इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, काफ़ी डिस्कशन हुई है इसके बारे में, बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
1: लाइक आ एक्स्ट्रा, दिस इज अश्विनी ऑन लाइक आ गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Travel ho best, sab kare test, Disha Rice ka hai zamana, Disha Basmati Rice.
6: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में, समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193।
8: Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel's Couture.
9: Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
10: Man, eh?

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129.64 इंडियन रुपी, 375.85 पाकिस्तानी रुपी, 449.46 श्रीलंकन रुपी, 165.21 बांग्लादेशी टाका, 89.17 अफगान अफगानी, 1.35 यूएस डॉलर्स, 175.31 केनियन शिलिंग, 63.64 मॉरिशियन रुपी.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £103.50 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:47 AM. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मुकेश जी की आवाज में आप सभी को सुनाया आनंद फिल्म से ये गीत मैंने तेरे लिए ही. What a beautiful track that one is. पूरी कोशिश होती है कि बहुत सारी वेरिएशन आपके लिए लेकर हम पहुँचे, क्योंकि इवनिंग शोज की स्पेशलिटी ये होती है कि दिन भर का थकारा आदमी, औरत, बच्चे सब के सब सोचते हैं कि ज़रा मज़ा आ जाए, मस्ती भरे गीत हो, मस्त भरा इंटरेक्शन हो. तो वही होता है इस शो में जिसका नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी. मैंने आप सबसे पूछा कि भाई आपके हिसाब से नहीं, आपके घर में किसकी वजह से आप लेट होते. तो सभी ने अपने अपने अनुभव दिया. कुछ लोगों ने कहा है कि हमारी बेटर हाफ हैं, उनकी वजह से हम लेट होते हैं. अच्छा, तो इस चीज़ को लेके डिबेट्स भी होते हैं, इस चीज़ को लेके डिस्कशंस भी होते हैं. लेकिन भाई सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं एंड उसके बाद में ऐसा होता है कि भाई ओके, फीमेल्स जो हैं वो लेट रेडी होती हैं. रीजन्स हैं उसके पीछे. एक तो हमें अपने लिए सजना संवरना ज़्यादा अच्छा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी फीमेल्स को. खुद के लिए हम इतना डिटेल में रेडी होती हैं कि बिल्कुल मैचिंग कान के झुमके होंगी, चूड़ियाँ होंगी, चप्पल होंगी, बिंदी होगी, पर्स होगी, सब कुछ. इसमें ना बेसिकली ये भी एक आर्ट है अगर आप देखें तो, ना कितनी सुंदर आर्ट है. और अपने आप से जब इंसान प्यार करता है तो डेफिनेटली खुद को अच्छे से सवार के एंड अच्छे से कैरी भी करता है ओवर द टाइम. इवन मैन हैव चेंज, बिल्कुल बहुत खूबसूरती के साथ में खुद को वो कैरी करते हैं, बड़े अच्छे से, मतलब बाल सजा के, कपड़े वपड़े अच्छे से सजा के निकलते हैं. आई रियली अप्रिशिएट पीपल जो बहुत अच्छे से रहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं रहना मतलब कि आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का एक एक एक एक पार्ट होता है. आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा आप उसकी वजह से फील करते हैं, और उसके बाद में फिर अच्छा फील होता है तो अच्छा ही बिहेव होता है. औरतों के साथ में डेफिनेटली जब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों को रेडी करना, घर की सारी चीज़ें करके, अंटिल अनलेस दे हैव अ पार्टनर जो बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करता है. सो यस, डेफिनेटली औरतों की वजह से लेट होते हैं, लेकिन उनके लेट होने के पीछे रीजंस क्या हैं? बिकॉज दे लव टू कैरी देमसेल्स, दे अप्रिशिएट देमसेल्स. आई थिंक इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन तो बनता है भाई, है ना? ये तो सीखना होता है ना, किसी भी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक जब आता है दो लोगों की तरफ से तो वो रिश्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत बनता है. आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा.
1: This is Laika. This is Ashwini on Laika Gold.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
6: Oh, terrible weather.
5: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
7: See ya, good luck with the interview.
6: Thank you, bye.
5: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली presents an evening of elegance with the legendary Anoop Chalota.
10: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
9: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Laika Radio Network.
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208767-2142.
12: Budget tight, पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? Laika Radio और Laika Gold लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।

0: Ashwin, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपीस. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आखिरी आवर में आप और हम पहुंच चुके हैं। इस आवर का आगाज बहुत ही खूबसूरत गीत फ्रॉम द फिल्म जख्म से हमने किया था, अलका याग्निक की आवाज में। गली में आज चांद निकला, नहीं नहीं हमारे यहाँ पे तो बादल है जी, तो हमारे यहाँ तो नहीं निकला आज चांद, है ना, वो बारिश होने वाली ना हल्की फुल्की। साथ में मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म से बहारो फूल बरसाओ। क्या बात है, जैसे ये गीत प्ले किया दे दनादन मैसेजेस आ गए, उसके बाद में नाना करते प्यार। मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज में जब जब फूल खिले से। हर एक गीत पे आप लोगों के मैसेजेस, हर एक गीत पे आप लोगों का उत्साह बढ़ाना और हर समय आप लोगों का साथ देना, आई कैन जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका कि जितना आप लोग साथ देते हैं, जितना प्यार देते हैं, बस ऐसे ही अपना प्यार और दुलार लाड़ और आशीर्वाद बनाए रखिए। जो आपके लिए हम प्रोग्राम लेके आते हैं उसके पीछे बस यही सब चीज़ें काम करती है, पैशन होता है, और पैशन फॉलो करके जब जहाँ पहुँचते हैं, जिस मंजिल पे पहुँचना होता है और वहाँ पे जब साथ देने वाले होते हैं, तो उसका मज़ा तो एंड उफ होता है। और ये जो जितने भी गीत आ रहे हैं वो उफ भी है। कई हमारे प्यारे लिसनर्स ने कहा नाना करते प्यार अश्विनी तुम्ही से कर बैठे, ओए होए क्या बात है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द लिसनर्स। संगीत आपको और हमको जोड़ता है, और जब आपकी और हमारी गानों की चॉइस सेम होती है तो कितना मज़ा आता है ना। और कितनी बार ऐसे होता है कि जो प्लेलिस्ट में यहाँ पे आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ, उसमें से कितने ऐसे गीत होते हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे लिसनर्स कहते हैं कि अरे आज सुबह ही तो मैं इस गीत के बारे में सोच रहा था। कोई कहता है मैं आज ना बस थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि अगर ये गीत अश्विनी प्ले कर दे तो, एंड देखो ये जब मैंने प्ले कर दिया तो आप और हम साथ में कितने खुश हुए। देखो हमारे गाने की चॉइसेस मिलती है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Chase gives you 2% cash back on your everyday spending.
3: Every day? Like Monday's train to work?
2: Yes.
3: Tuesday's big shop?
2: Yes again.
3: Wednesday's coffee treat?
2: Yes, cash back.
3: Thursday's lunch, Friday's brunch and Saturday's takeaway?
2: Yep, yep and yep.
3: Super.
2: Oh, nothing on Sundays.
3: I take it easy.
2: Lovely. Enjoy 2% cash back on debit or credit card spending on groceries, restaurants, everyday transport and fuel. Search Chase Bank. 18 plus UK residents. Chase current and saver accounts required. Maximum £20 per month. Eligibility qualification. Exceptions and T's and C's apply.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation.
6: In Dubai.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
8: Dad, Dad, Dad!
9: What's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK, regulated by the FCA and PRA.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:25। मोहम्मद रफी की आवाज में ताजमहल फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। साहिर लुधियानवी हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और जब इतने मंझे हुए आर्टिस्टों के जब गीत उन्होंने लिखे हुए और जब हम वो सुनते हैं इन कंपोजिशंस में, तो दिल बाग बाग तो होता है, लेकिन कई बार ये ठहरा वाले गाने कहीं ना कहीं हमें रुका के मजबूर करते हैं कि सोचे कि कितना सुंदर होता है ना प्यार, कि जब हम किसी को कहते हैं कि भाई जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, मतलब कितना वो दो प्यार करने वाले इंसान फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, अपने प्यार को जो महसूस करते हैं उन्हें शब्दों में बयां कर रहे हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तो कितना सुंदर लगता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, व्हेन यू लव समबडी यू शुड टेल देम दैट यू नो आप उन्हें चाहते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत है प्यार, है ना। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप किसी से प्यार करते हो, जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहता है किसी भी कारणवश, है ना, तो एक कई बार रिश्ते नहीं चल पड़ते आगे, तो एक खूबसूरत मोड़ देखे उसे छोड़ तो देना चाहिए, लेकिन डोंट बी अनकाइंड, डोंट बी बिटर विद एनी ऑफ द रिलेशनशिप्स इन लाइफ, बिकॉज देन कहीं ना कहीं ये सवाल तो जहन में आता है ना कि क्या वो प्यार था। ये सवाल मुझे बहुत आता है, क्योंकि जब प्यार आप किसी से करते हैं तो आप कैसे अनकाइंड बनोगे यार उनसे, है ना, कैसे बिटर बन सकते हो। नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के लिए किशोर कुमार एंड अनुराधा की आवाज में कलाकार फिल्म से।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड।
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: पल भर के लिए
9: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज।
10: इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा।
9: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो Network.
11: Kajal Couture's biggest end of season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
13: 4 beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 129.61 इंडियन रुपी, 375.55 पाकिस्तानी रुपी, 449.25 श्रीलंकन रुपी, 165.11 बांग्लादेशी टाका, 89.26 अफगान अफगानी, 1.35 यूएस डॉलर्स, 175.2 कैनियन शिलिंग, 63.59 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.17 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:40. कंगन फिल्म से आप सभी को सुनाया था महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में, एंड उसके पहले किशोर कुमार अनुदा पोडवाल की आवाज़ में बढ़िया से ट्रैक्स लाइंड अप थे, है ना. मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज के शो में. हमेशा की तरह बस इतना कहेंगे भाई कि गोल्ड नाइट ओवरनाइट सर्विस है, ज़रूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. सो गज़ल या कवाली, मैं क्या सुनाने वाली, आज मैं गज़ल सुनाने वाली. एंड जगजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही मेलेडियस गज़ल है, वन ऑफ माय फेवरेट्स है. कल चौदहवीं की रात थी तो ज़रूर सुनिएगा. दिस विल बी द लास्ट ट्रैक, लेकिन उसके पहले आप सभी को सुना रही हूँ आन मिलो सजना से, इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक, लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. और टैगलाइंस बता दें हमारे हमेशा की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें. आपके मन और आपके दिमाग में क्या चल रहा है प्लीज़ बोलिए, कम्युनिकेट करिए, और रिलेशनशिप्स सीधी साथी स्वच्छ सुंदर रखिए. प्यार खूबसूरत है तो प्यार तो प्यार लो, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए लगता है. एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता है. तो कल हम मनाएंगे मेरा फेवरेट डे विच इज़ मिड वीक, माई फेवरेट डे विच इज़ अगेन दो दिन इधर दो दिन उधर, फील गुड वेडनेसडे. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.
0: दिस इज़ द LIKA रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स.
2: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज़ प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस. डिस्कवर द सीरियस delicious possibilities with Tilda.

0: लाइका गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
3: मैंने ना function रखा हुआ है।
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
9: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: loss, up her stock loss.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
5: हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: जिंदगी बर्बाद हो गया।
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: अगर आज लिखेगी तो कमलेश की लुगाई, दो साल बाद लिखेगी तो बिट्टू की मम्मी.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley, in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
1: Banana function lakha hua hai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: Location, location, location.